0: FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति
1: मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शिरसा नमामि।

चराचर जगत संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन मुक्तामणि रंजितां श्री

सविता पवन सुत हनुमान जी की जय। शरणम ओम प्लीज आफ्टर मी ओम सीता राम भ्याम नमः। सीताराम भ्याम नमः। ओम विष्णवे नमः। बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय।

श्री रघुनाथ जी फिर आए चले और ऋषिमुख पर्वत के निकटता आ गए। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी प्रोसीडेड ऑन ऋषिमुख पर्वत के सहज चले और ऋषिमुख

पर्वत के निकट आ गए एंड देन ही अप्रोच ही नियर ही ड्रू वेरी क्लोज टू ऋषि मुख हिल. वहां मंत्रियों के साथ सुग्रीव रहते थे एंड अपॉन और रिजाइडिंग ऑन दिस हिल नोन एज द ऋषि मुख हिल वॉज सुग्रीव टुगेदर विद हिज मिनिस्टर्स. मंत्रियों के साथ सुग्रीव रहते थे. अतुल बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देख देन ही सॉ दीज टू वेरी हैंडसम जेंटलमैन. ही सॉ श्री राम दीज टू ब्रदर्स एंड लक्ष्मण जी ऑफ इमेजरेबल अतुल बल ऑफ इमेजरेबल माइट एंड स्ट्रेंथ दे वर अप्रोचिंग. सियावर राम चंद्र की जय.

हनुमान जी वेरी सिंपल वेरी हम्बल लुकिंग लाइक स्टूडेंट ब्राह्मिन स्टूडेंट वेयरिंग इज होती द माला अराउंड हिज नेक एंड पॉसिबली दे कैन हावर ही सेज ही गोज अप टू श्री राम लक्ष्मण विथ ऑल ह्यूमिलिटी बेंडिंग बिफोर ही सेज हे वीरो सावले और गोरे शरीर वाले आप दोनों कौन हैं Who are you? You know, one dark, one fair, two great heroes. He says, "Jo shatriyon ke vesh mein van mein fir rahe hai, this being disguised and you are roaming the forest like kshatriyas. Who are you, two great heroes?" He Swami, kato dharti par komal charno se chalne wale aap. किस कारण वन में विचार रहे हैं सियावर रामचंद्र की जय ट्रेडिंग द हार्ड ग्राउंड विथ योर सॉफ्ट फीट व्हाई आर यू वंडरिंग इन दिस फॉरेस्ट दिस वन टेल मी इन दिस अदर वर्स दैट सेज ब्यूटीफुल लेट अस सिंग दिस वर्स सेज मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दसह बन आतप बाता की तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो पवन सुत हनुमान की जय आपके कोमल मनोहर और सुंदर अंग वन की दुहसह धूप और वायु को सह रहे है दो यू आर पोजेस्ड ऑफ दिस You know, delicate, charming, and sundar anga, beautiful limbs. How is it that you expose yourself to all to the hot sun, in the stormy wind? Is it that? Kya aap Brahma, Vishnu, Mahesh? Are you Brahma Ji, the creator? Are you Sri Vishnu, who is the sustainer of the universe? Who are you, my lord? Are you Mahadev Ji, the reabsorber? इन तीन देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर और नारायण यू नो दीज टू ग्रेट वंस नर नारायण हु आर यू